कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे कृष्ण।